8 बजे सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस। रात 8:02 पे रंगला पंजाब प्रोग्राम एंजॉय करोगे। रात 9 बजे सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस ते 9:02 पे थोड़ियां हिंदी फिल्मी गीतां दीआं फरमाइशां पूरियां होणगीआं प्रोग्राम दिल चाहता है दे राही। रात 10 बजे सुनोगे शामी गजल प्रोग्राम। 10:30 एक प्यार का नगमा है। 11 बजे तक प्रसारित होने वाले साडे प्रोग्रामां दा वेरवा ते प्रसारण समां। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसीं सुन रहे हो FM रेनबो चैनल। सवेर दे 6:05 हो रहे ने। आओ सर्वन करदे हां भगती संगीत दा प्रोग्राम।

दिल चाहता है दिराही। रात 10 बजे सुनोगे शामी गजल प्रोग्राम। 10:30 बजे एक प्यार का नगमा है। 11 बजे तक प्रसारित होने वाले साडे प्रोग्रामा दा वेरवा ते प्रसारण समा। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो FM रेनबो चैनल। सवेर दे 6:05 हो रहे ने। आओ सर्वन कर दें भक्ति संगीत दा प्रोग्राम वंदना।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग है जी। थोड़ी अपनी आज अंजलि दे बोलो और आज दा गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम दा ए सफर थोड़ी अपनी आज अंजलि दे नाल शुरू हुंदा जी। मैं कह जी खूबसूरत जी सवेर, खूबसूरत जी शुरुआत और खूबसूरत जिया दिन। और इस दिन नू वधिया आपां किद्दां बनाउणा, जदों असीं आप वधिया हो गए, जदों साडी अपनी सेहत वधिया होगी तां मैं कहा अपने आप ही सारा कुछ वधिया हो जाणा। तो क्यों ना अज दी इस गुड वाली मॉर्निंग दी शुरुआत करदे आं गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम दे नाल, और इस सोच दे नाल कि अपनी सेहत नू चंगा बनाउणा, अपने आप नू वधिया बनाउणा। और मैं कहा जी इस खूबसूरत

प्रोग्राम चल रहे हैं जी गुड मॉर्निंग जलंधर थोड़ी अपनी आज अंजलि दे नाल और एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी जलंधर 103.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी अमृतसर दे स्रोते सानू सुन रहे ने सो 7:18 होए ने गल हो रही है जी अज साडी सेहत दे नाल जुड़ी हुई बिल्कुल जी और खास गलबात इस करके क्योंकि अज वर्ल्ड अस्थमा डे सैलीब्रेट हो रहा है लोगों नू जागरूकता जुड़ी है इस दिन के प्रति दवाई जा रही है ये गल अज इस करके कर रहे हैं कि एक इस दिन जड़ा है एक खास बीमारी जी कह दो अजिही बीमारी जी कि साढ़े सह के नाल जुड़ी हुई है उसके प्रति गलबात करते हैं इस दिन की शुरुआत जी है ना ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ अस्थमा के वलों की गई सी जो कि दुनिया भर के अस्थमा के प्रति दमे के प्रति लोगों के जागरूकता फैलाते हैं और लोगों इस प्रति जागरूक करते हैं हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को यह दिन सैलीब्रेट होंगे सो आखिरकार ये बीमारी की है इसका कारण की बनता है होर की खास सन

इंजीनियर्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट देवल सांबिया गया जिसका नाम है सारंग बोपड़े और दस जी कि पिछले 11 साल तो 10,000 NGOs के नाल इस वेले ये जुड़ के इस प्लेटफॉर्म के उत्ते काम कर रहे हैं। 25 लाख तो ज़्यादा का जोड़ा दान इस प्लेटफॉर्म के राही किया जा चुका है और 400 करोड़ रुपये तक का समान जोड़ा जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जा चुका है और वाकई ही उस दे वल्लों एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया गया कि जिन्हां लोगों नूं वाकई ही जरूरत है उन्हां लोगों तक वो समान पहुँचाया जाए डायरैक्ट जिहड़ा है। पहलां तां वेरीफिकेशन होएगी, कई बार ये देख लैंदे आ सी कि कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशनस कई सूबियां दे विच बन जांदियां ने, हड़ दे ऐसे समय आ जाते हैं कि लोग आम जिंदगी तो बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं, अजिहे दे विच खाणा पीना या फिर जरूरत का जिन्ना भी समान है वह उन्होंने तक पहुँचाने के लिए लोग तो बहुत दान करते हैं पर उन्होंने तक डायरैक्टली नहीं पहुँच पाता सीगा। सो एक ऐप दे राही भाई मदद तो मिली और बाकी ही मदद दे राही जड़ा है लोगों नु सुख भी मिल पाया। सो प्रोग्राम चल रहा है जी गुड मॉर्निंग जलंधर थोड़ी अपनी आरजे अंजलि दे नाल होर भी बहुत सारिया गल्लां बातें थोड़ी जिंदगी दे नाल जुड़िया हुई आ रही जी। बस बस इस गीत तो बाद

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: FM 102.7 MHz 103.6 MHz आकाशवाणी जलंधर आकाशवाणी अमृतसर दे सरोते मैनु सुन रहे ने।

जी सत श्री अकाल, वेलकम, आदाब ते नमस्ते, वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबनों। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से तुहाडा सब दा एक बार फिर तो निघा जिहा स्वागत है। क्योंकि जी रात ते तड़के, किते तड़के ते किते रात नूं जिहड़ी ना बारिश यानी कि बरसात मीह पिया है ते ठंडियां ठंडियां हवावां चलियां ने, इस करके किते ना किते सानूं कदी कदी निघा निघा जिहा वी महसूस होना चाहिए। सो जी सबनों वॉर्म वेलकम, गुड मॉर्निंग ते सत श्री अकाल। आगाज़ करदे हां जी प्रोग्राम गीत बहार, और तुसी सुन रहे हो कि आवाज़ तो बड़ी प्यारी जानी पहचानी है, तो कई ने जिहड़े गैस्ट किए सी बिल्कुल वह गैस्ट तुहाडे राइट ने, बिल्कुल सही ने जी। थोड़ी प्यारी दोस्त रणदीप, आरजे रणदीप थोड़े नाल है। 10:05 हो चुके ने, खबरों तो बाद प्रोग्राम गीत बहार, तो पूरे 2 तक तुसी इंजॉय करना जी मेरे नाल सारे दे सारे प्रोग्राम, जिहड़े कि रूटीन वाइज एक घंटे बाद बदलते रहने ने। पर 2 तक मैं किधरे नहीं बदलना, सिर्फ प्रोग्राम बदलेंगे, प्रोग्राम का नाम बदलेगा। तो आगाज़ करते हैं जी गीत बहार का। पहला गीत फिल्म है जी मेजर साहिब, जो कि 1998 बनी सी। इस फिल्म के बारे गलबात करांगे, लेकिन जी पहले हो जाए

जी दोस्तों, प्यार किया तो निभाना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुसी एफएम रेनबो नू प्यार कर दियो, यानी कि 102.7 मेगाहर्ट्ज़ नू ट्यून करके रख दियो, ते बहुत सारा प्यार तुसी करदे रहंदे हो, ते तुहानू प्रोग्राम्स दे जरिए गीत सुनदे ते तुहानू बहुत सारा प्यार जिहड़ा ना तुहानू वापस

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com

गांव वालों बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। कसम सुनते रहिए 102.7 FM।

इस वेड़े जिथे लगेगी एक घंटे की पूरी की पूरी रौनक यानी कि तुसी कॉल करनी है अपना नाम दसना है फिर गीत तुहानू सुनाए जाएंगे लेकिन कोशिश करियो कि एको गीत जिहड़ा तुसी बार बार बार बार सुनते हो ना हो कुछ वक्रा सिंगर नवे सिंगर या पुराने सिंगरस के भी गीत होण पर कुछ हटके होण जिहड़े कि सानू ते तुहानू ते सुनन वाले

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

जी दोस्तों, प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच पहली रेमेडी जिहड़ी मैं तुहानूं दस्सण जा रही हाँ, वह है जी जिवें कि हुण गर्मी शुरू हो गई है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: जी छोटे जी कमर्शियल ब्रेक तो बाद प्रोग्राम होम स्वीट होम ते तुहाडी प्यारी आजे दोस्त रणदीप है तुहाडे नाल। स्टूडियो दी कड़ी ते 12:47 ते 30 सैकेंड हो चुके ने। गल कर रही सी मैं कमर्शियल ब्रेक तो पहले तुहाडे नाल कि अपने घर नूं कमरिया नूं डाइनिंग एरिया नूं या लॉबी नूं किस तरह असीं सजा सकदे हां। बहुत सारे वक्रे वक्रे तरीके मैं तुहाडे नाल सांझे कीते ने ते उहदे विचों इक चीज़ जिहड़ी आपां मिस नहीं करनी सी जिहड़ी कि बेहद जरूरी सी। जी बिल्कुल, स्टाइलिश कड़ी लगाउन दे नाल जिहड़ी है पूरे घर दी कमरे दियां कोई इहो जिहा रूम या डाइनिंग एरिया जिहदी पूरी दी पूरी दिख जिहड़ी ना सिर्फ ते सिर्फ तुहाडी वॉल क्लॉक दे नाल ही कंप्लीट हो जाती है। मतलब पूरा अट्रैक्ट

गांव वालों, बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। कसम सुनते रहिए 102.7 एफएम रेनबो।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर ते न्यूज़ ऑन EIR दे ज़रिए दोस्त इस वेले जुड़े हुए ने FM रेनबो चैनल दे नाल ते सुन रहे ने प्रोग्राम दिल आज शायर है। इस प्रोग्राम दे विच साडे लिसनर दोस्त भी अपनी हाजिरी लगवा रहे ने। जेकर चाहुंदे हो तुसी भी इस प्रोग्राम दा हिस्सा बनना तां तुसी सानू अपने दिल दे हालात जां जिहड़ी तुहानू शायरी अगर तुसी लिखना पसंद करदे हो जां लिखदे हो तां तुसी ओह शायरी अपने आरजे दोस्त तक पहुँचा सकदे हो जी। जेकर नहीं भी लिखदे तां कोई गल नहीं जी, किसी भी शायर की लिखी हुई शायरी तुसी साडे तक भेज सकदे हो जी। नंबर है 98 55 10 10 27 9855 10

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक दिन खत्म हो ही जाएगी, एक दिन खत्म हो ही जाएगी ये तड़प, ये बेचैनी, ये दर्द, ये ख्वाहिश, ये दिल, ये धड़कन, ये खुशी, ये मुस्कुराहट, ना रहेगा डर कुछ खोने का, ना रहेगी तलब कुछ पाने की, एक दिन ये भी हो जाएगा। खत्म हो जाएगा सुकून भी दिल का, और ना रहेगा मलाल किसी चीज का। फिक्र होगी ना दिल में, ना नाराजगी किसी के लिए, रह जाएगा तो बस एक जिस्म, एक कफन और एक दफन। सोनू मलेरकोटला तो साढ़े नाल ये एक कविता जिहड़ी है साढ़े नाल सांझी कर रहे सी। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी। सो आ प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच साढ़े कोल अगली शायरी भेजी है जी। मोहम्मद मुजफ्फर, मोहम्मद अरमान पेंट खुर्द जिला मलेरकोटला तो की लिख रहे ने अपनी शायरी दे विच कि अगर मौका मिला कभी तो कागज़ पर अपनी थकान लिखूंगा, मजबूत कंधों के पीछे छुपा वो छोटा सा इंसान लिखूंगा, वो जो हर मुश्किल में मुस्कुरा कर कहता है सब ठीक है, उस एक झूठ के पीछे दबे हजारों बेबस तूफान लिखूंगा, अगर मौका मिला कभी तो कागज पर अपनी थकान लिखूंगा, कि नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ अपनी जीत के चर्चे दुनिया में, मैं तो हार कर भी जो मुस्कुराया वो लहू लुहान स्वाभिमान लिखूंगा, अगर मौका मिला कभी तो कागज पर अपनी थकान लिखूंगा, लिखूंगा वो रातें जब तकिया गवाह था मेरी सिसकियों का, पर सुबह उठकर फिर से पहना वो चट्टान जैसा इंसान लिखूंगा, अगर मौका मिला कभी तो कागज पर अपनी थकान लिखूंगा, और मैं लिख पाऊं कुछ तो मैं खुद को लिखूंगा, अपनी रूह के हर जख्म को अपना ही लिखूंगा, और अगर मौका मिला कभी तो कागज़ पर अपनी थकान लिखूंगा, मजबूत कंधों के पीछे छुपा वो छोटा सा इंसान लिखूंगा, वो छोटा सा इंसान लिखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और साढ़े को अगली शायरी आन पहुंची है जी बलविंदर सरा पिंड मोड़जन सिखा हनुमानगढ़ तो। लिख रहे हैं जी कि मेरी बेचैनियों का करार तुमसे ही आता है, मेरी बेचैनियों का करार तुमसे ही आता है, तुमको देखकर मेरा दिल बार बार मुस्कुराता है, तुम्हारे साथ बिताया हर पल सुकून दे जाता है, और तुम्हारे होने से जिंदगी में सब कुछ आसान हो जाता है। मेरे जिहड़े दोस्त ने ना कितनी मासूमियत

कि मत सताओ हमें, हम सताए हुए हैं। अकेले रहने का गम उठाए हुए हैं। खिलौना समझ कर न खेलो हमसे, हम भी उसी खुदा के बनाए हुए हैं। कुलविंदर टेलर जी पिंड कंदोला लागे आदमपुर तो ये शायरी साढ़े तक साझी कर रहे हैं जी। प्रोग्राम दिलाज शायर है जिसनों तुसी सुन पा रहे हो जी। एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी जलंधर 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते न्यूज़ ऑन AIR ऐप दे जरिए। और इस प्रोग्राम दे विच जेकर तुसी भी अपनी हाजिरी लगवाना चाहते हो तो नंबर है जी 9855 10 10 27 9855 10 10 27। नंबर के उपर जी सानू अगली शायरी भेजी है जी रसूलपुर कलां तो काका जी ने लिख रहे ने कि तू जो रूठा तो जग रूठा सा लगता है, तेरे बिना हर रंग फीका सा लगता है, तेरी हंसी में ही मेरी दुनिया बसती थी, अब हर पल ये दिल सूना सा लगता है, मना लूं तुझे तो फिर से बहार आ जाए, वरना ये मौसम भी अधूरा सा लगता है, ये मौसम भी अधूरा सा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अगली शायरी साढ़े तक भेज रहे ने साढ़े दोस्त किरण अरोला जी ग्रीन पार्क कपूरथला तो, और लिख रहे ने कि तेरा इंतज़ार है, अब तेरा इंतज़ार है, बस तेरा इंतज़ार है, दिल पे छाया हर घड़ी तेरा ही खुमार है, रातें भी उदास हैं, दिन भी बेकरार है, तेरे बिना जिंदगी जैसे कोई उधार है, तेरा इंतज़ार है, बस तेरा इंतजार है। सो इंतजार दियां घड़ियां जड़ियां ने जी वह किरण अरोला जी के लिए तो खत्म हो चुकी ने, क्योंकि उन्होंने शायरी जी पढ़ी जा चुकी है। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी अपनी शायरी साढ़े तक पहुँचती करने के लिए। तो साढ़े अगले दोस्त जड़े ने उन्होंने भी अपनी शायरी साढ़े तक पहुँचती की है। लिख रहे हैं कि किस

याद आती है दूर जाने के बाद। बिल्कुल जी, जो तो इंसान दूर चला जाता है उस तो बाद ही उसकी याद आती है। सो कोई नहीं जी, ये यादां हमेशा आपस के बीच असी बना के रखांगे। और अगली खूबसूरत शायरी भेजी है जी गुखी भाड़ीवाल अमृतसर तो, और भेजने वाले दोस्त ने शायद नाम नहीं लिखा है, लिख रहे ने कि वो खूबसूरत ना सही मगर उसका दिल अच्छा है, जुबान अच्छी है, चाहत ये है उसमें समा जाऊं मैं क्योंकि उसकी वफा अच्छी है। बिल्कुल जी, और आज दे इस प्रोग्राम दी आखिरी शायरी जी पेश करन जा रहे हैं इंजीनियर अमनदीप सिंह हठूर, पिंड हठूर, तहसील जगराऊं, जिला लुधियाना तो शायरी साढ़े तक साझी कर रहे ने जी। लिख रहे ने कि दुनिया ते तेरी दीद बाजों सोना कुछ नहीं, तेरे बिना पिछों मेरा रहना कुछ नहीं, कि तेरा हाथ फड़ के तेनू तकना चाहुंदा, मुंहों बोल के पर तेनू कहना कुछ नहीं, और मोह तेरे विच बज के रहना, गुस्सा रोसा तेरा हस के सहना, तू मेरी तेनू अपना कहना, होर किसे तों लैना कुछ नहीं, दुनिया ते तेरी दीद बाजों सोना कुछ नहीं, कि जिंदगी दे हर साह नाल तू मेरे नाल रही, जिंदगी दे हर साह नाल तू मेरे नाल रही, तेनू तेरे तो मंगना मैं होर मंगना कुछ नहीं, दुनिया ते तेरी दीद बाजों सोना कुछ नहीं, तेरी दीद बाजों सोना कुछ नहीं।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अनुराधा, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आपको सेहतमंद बनाए रखने का संकल्प है हमारा, इसी प्रयास में हमारा आज का विषय है अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। आपको जानकारी दे दें कि विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज के इस विशेष दिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अजीत मानसिंह, ईएनटी स्पेशलिस्ट न्यू दिल्ली, और डॉक्टर रेहान चौधरी, मेडिकल ऑफिसर सीजीएचएस न्यू दिल्ली। यदि आज के विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो तुरंत हमें कॉल करें। स्टूडियो के नंबर्स हैं 011-2342-1080 और 011-2342-1082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। आप नंबर डायल करें। इधर मैं स्वागत करती हूं अपने दोनों विशेषज्ञों का, डॉक्टर अजीत मानसिंह सर और डॉक्टर रेहान सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
1: जी डॉक्टर अजीत सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अस्थमा क्या है और अस्थमा किस तरह से शरीर को प्रभावित करता है?
2: अस्थमा ज़्यादातर छाती की परेशानी है, जहाँ छाती बाहर के प्रदूषण और जो ट्रिगर फैक्टर कहते हैं उससे ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करते हैं, तो सांस के रास्ते जो हैं वो सुकड़ जाते हैं
1: जी।
2: तो पूरी तरह छाती में हवा नहीं जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है
1: जी। बहुत सारे सवाल हैं अभी हमारे पास और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और इस समय गीत हम सुनेंगे जो डॉक्टर रेहान सर ने ऑफलाइन मुझे बताया था। चलिए सुनते हैं।

0: जी हाँ, रेडियो डॉक्टर में आज हम चर्चा कर रहे हैं अस्थमा पर। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर है 01123421080, 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9868107070 पर। और डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि उनका क्या है सवाल। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: Hello?
0: जी, अपना नाम बताएं सर।
1: जी, रविंद्र बोल रहा हूँ, दिल्ली से।
0: जी रविंद्र जी, क्या जान

0: चाहते हैं आप?
1: जानकारी चाहिए मैम, जैसे सर्दी जुकाम हो गया है, प्रेजेंट में है भी, सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी आ जाती है, खांसी आती है तो सीने में तो हल्का फुल्का जकड़न होता है, लेकिन जब खांसी तेज आती है तो पीछे की जो पसलियां की हड्डियां हैं उनमें दर्द होने लगता है, तो क्या कारण हो सकता है?
0: क्या कारण हो सकता है आप ये जानना चाहते हैं?
1: जी जी जी।
0: अच्छा,
2: जैसा कि आप बता रहे हैं बार बार खांसी लेने से आपको दर्द हो रहा है, यही तकलीफ आपकी?
1: जी जी।
2: देखिए, जब आप बार बार खांसते हैं तो हमारी मांसपेशियों में दबाव पड़ता है, तो उसी वजह से दर्द होता है। तो जैसे अगर आप खांसी को कंट्रोल में रखेंगे तो धीरे धीरे आपका दर्द भी चला जाएगा।
1: जी, यानी वैसे और कोई लक्षण तो नहीं सर ना?
2: नहीं, देखो अस्थमा के मेन लक्षण ये होते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है, सीटी जैसी आवाज आती है।
1: नहीं, ऐसा तो नहीं।
2: हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर खांसी को कंट्रोल में रखेंगे तो आपका वो दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो पहले अभी आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि खांसी को अभी कंट्रोल कीजिए।
0: जी, थोड़ी सी

0: देखो, अस्थमा के मेन लक्षण ये होते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है, सीटी जैसी आवाज़ आती है।
1: नहीं ऐसा तो नहीं है
0: हाँ,
1: सर
0: तो कोई
1: फिलहाल
0: दिक्कत नहीं है। आप अगर खांसी को कंट्रोल में रखेंगे तो आपका वो दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो
1: जी।
0: पहले अभी
1: बेहतर
0: आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि खांसी को अभी कंट्रोल कीजिए।
2: जी, थोड़ी सी
1: बेहतर
2: एहतियात बरतें, मौसम बदलने का भी असर हो सकता है, और बाकी लक्षण तो आपको बता ही दिए हैं और आगे भी हम चर्चा करेंगे, तो प्रोग्राम गौर से सुनते रहें, हम अपने सभी श्रोताओं से यही करेंगे। डॉक्टर रेहान सर, आपसे एक सवाल मेरा अब ये है कि अस्थमा होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोगों को ज़रा से इस मौसम में खांसी ज़ुकाम होता है तो ये लगने लगता है कि कहीं बीमारी तो नहीं कोई है ये।
0: देखिए, अस्थमा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक अस्थमा, एक होता है इंट्रिंसिक।
2: जी
0: जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो होता है वो मेनली एलर्जेंस के कारण होता है, जैसे डस्ट हो गया, धुआं हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये मेनली बच्चों में होता है, लेकिन ये टाइम के साथ ठीक होने लगता है। जबकि जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है वो मेनली बड़ों में होता है, एडोलसेंस के बाद होता है,
2: जी,
0: और ये मेनली इन्फेक्शंस के कारण होता है, लेकिन ये जहाँ तक रहता है थोड़ा लाइफ लॉन्ग चलता है ये अस्थमा। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो कंट्रोल रहती हैं चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं
2: जी। और ट्रीटमेंट क्या होगा आगे आपसे जानेंगे। डॉक्टर अजीत सर, आपसे सवाल है मेरा कि अस्थमा के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं।
3: अस्थमा के सबसे बड़े लक्षण ये होते हैं कि खांसी होती है, उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होती है, खासकर सांस बाहर निकालने में तकलीफ ज़्यादा होती है, अंदर फिर भी लेते हैं और जब सांस बाहर निकालते हैं तो सीटी की आवाज़ बनती है।
2: अच्छा।
3: कई बारी तो ये सीटी की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आसपास के लोगों को भी सुनाई देती है, पर मरीज़ यही कहता है कि सीटी की आवाज़ है, और ये परेशानी रात को जब लेटे होते हैं तो और ख़राब हो जाती है।
2: अच्छा, तो ये कहा जा सकता है कि रात में या दिन में अस्थमा ज़्यादा अटैक करता है, ऐसा कहा जा सकता है। इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। बताएं अजीत सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में।
3: अस्थमा के लक्षण और जो सांस लेने में तकलीफ होती है ज़्यादातर रात को ही होती है, क्योंकि जब आदमी लेटा होता है तब हवा कम जाती है फेफड़ों में। तो दिन में अगर आदमी खड़ा है और थोड़ा बहुत काम कर रहा है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो कई बारी अस्थमा के लक्षण कम होते हैं, सांस लेने में दिक्कत कम होती है। सुबह सुबह अगर एकदम बाहर निकलो, ठंड में जाओ, तब भी ट्रिगर फैक्टर होते, तब भी अस्थमा के लक्षण बढ़ जाते हैं।
2: तो ये थोड़ी सी एहतियात रखनी होती है कि जब आप सोकर उठें तो थोड़ा सा तापमान लेवल पे आ जाने दें, तब कहीं जाके हमें बाहर निकलना चाहिए।
3: एकदम से अपने पैरों को ठंडी फर्श पे नहीं टच करने दें, अचानक ठंडी हवा नहीं लगने दें।
2: जी, अस्थमा के रोगियों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे रेहान सर।
0: जी देखिए, धीरे धीरे जैसे जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, और जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, धूल हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गया, तो जैसे जैसे इनसे एक्सपोजर बढ़ रहा है उसी हिसाब से इसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं।
2: डॉक्टर अजीत सर, मौसम बदलाव की वजह से अस्थमा जो है गंभीर रूप ले सकता है क्या।
3: मौसम बदलाव के दो चीज़ें हैं, एक तो अभी जो मार्च अप्रैल में है मौसम बदलता है, उसके साथ ही पोलन सीजन है, पेड़ का जो पोलन है जो कि सबसे बड़ा कारण है अस्थमा का, एक अभी होता है, एक सितंबर अक्टूबर में होता है, दोनों ही टाइम मौसम बदलाव के साथ ही पोलन होते हैं। उसके बावजूद अचानक सर्द गर्म के और जब मौसम बदलता है तब भी छाती के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, अस्थमा के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं।
2: जी, तो श्रोताओं लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अस्थमा किस तरह से आपको अटैक करता है और किस मौसम में आपको सावधान रहना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हैं, ये आपको ज़रूर बताएंगे। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 0112342108 और 0112342108। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी करें और उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर रेहान सर, अस्थमा का अटैक आने पर प्रथम उपचार क्या हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिनको जानकारी है वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जानकारी नहीं भी होती है तो अचानक से ऐसा अटैक आने पर लोग परेशान हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, शुभ नाम बताएं अपना।
4: जी सर को भी नमस्कार, मैं यामिन भाई रेडियो वाला।
2: जी जी जी, बताएं।
4: मैं सबसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि जिनके मम्मी पापा को अस्थमा या ये सांस की बीमारी होती है, क्या उनके बच्चों में ये बीमारी होने का संभावना रहती है, ये बताएं कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं बच्चे।

0: देखिए, जो अस्थमा होता है उसके दो कारण होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी रहता है, जेनेटिकल भी रहता है। तो जेनेटिकल फैक्टर में अगर एक पेरेंट को अस्थमा है तो लगभग चांसेस 20 से 30% रहते हैं कि वो बच्चों में जाए। अगर दोनों पेरेंट्स को अस्थमा है तो उस केस में चांसेस 40 से 60% भी हो सकते हैं। तो आपको यही है जो ट्रिगरिंग फैक्टर, जैसा कि हम बता रहे हैं, धूल हो गया, मिट्टी हो गया, स्मोकिंग हो गया, इन सब चीज़ों से दूर रहें और प्रॉपर इनहेलर का जो आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट का ध्यान रखें।
1: सर, ये भी अब सवाल उठता है कि अस्थमा का अटैक आने पर प्रथम उपचार क्या करना चाहिए, जैसा कि मैं कॉल लेने से पहले आपसे पूछ रही थी।
0: देखिए, सबसे प्रथम तो जो पेशेंट रहता है अस्थमा का, उनके जो ट्रीटमेंट होता है, तो सबसे पहले तो पेशेंट अस्थमा अटैक आते ही सीधे बैठ जाना है।
1: जी
0: उसके बाद में जो इनहेलर होता है, इनहेलर के 2 से 3 जो पंप होते हैं वो इनहेलर के वो लेने होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है, और
1: जी
0: अगर हर 20 मिनट में ये रिपीट करना है। अगर सही नहीं होता है फिर जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचें।
1: जी तो ध्यान रखें कि बहुत नॉर्मल उसको ना लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अटैक है अस्थमा का, तो तुरंत अवेयर हो जाएं और हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें और तमाम जानकारी जो लें और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचें, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हेलो,
1: जी, आपका स्वागत है
2: हाँ डॉक्टर
1: कार्यक्रम
2: साहब,
1: में।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर
0: नमस्कार
1: साहब
0: नमस्कार।
1: नमस्कार कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपको।
2: मैं
1: बताएं क्या सवाल है
2: दिल्ली से
1: आपका,
2: बोल रहा हूँ सर।
1: कहाँ से बोल रहे हैं सर?
2: मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी, शुभ नाम बता दें अपना।
2: हाँ, वीपी सिंह नाम है मेरा।
1: जी वीपी सिंह जी, बताएं क्या सवाल है आपका।
2: डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले मुझे कुछ दिन मैंने आपसे टेस्ट कराए थे, सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे,
1: जी
2: और 2 महीने पहले मुझे खांसी हुई थी और खांसी का तो ट्रीटमेंट हो गया,
1: जी
2: अब खांसी है नहीं। लेकिन जब कभी कभी धीरे धीरे जब हम खांसते हैं तो पेन होता है चेस्ट के अंदर,
1: अच्छा।
2: हल्का सा, खांसी जोर से नहीं आती है जैसे नॉर्मल तरीके से कई बार खांसी आ जाती है,
1: जी
2: उस वजह से उस पेन होता है चेस्ट में। तो ये क्या, कौन सा लक्षण हो सकता है, ये मेरा जानना है।
0: देखिए, आप जो बता रहे हैं आपको खांसी के साथ में चेस्ट में पेन है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ये चेस्ट की बीमारी हो सकती है या फिर आपके जो कार्डियक इशू हो सकता है वो हो सकता है। तो इसको रूल आउट करने के लिए बेसिक टेस्ट होते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके अलावा एक मेजर डिफरेंस जो होता है सांस की बीमारी और कार्डियक में, कि सांस की बीमारी में मेन सीटी जैसी आवाज़ आती है, जबकि
2: अच्छा
0: जो कार्डियक बीमारी है उसके अंदर सीटी जैसी आवाज़ नहीं आती, लेकिन सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रेथलेसनेस जिसको बोला जाता है। तो आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाइए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलेंगे तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इस चीज़ को।
2: सर, एक सेकंड, आप फोन काटिएगा नहीं, मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है,
1: जी
2: ना
1: आपकी
2: सांस
1: उम्र क्या है
2: बाहर
1: सर,
2: निकालने।
1: उम्र क्या है आपकी लगभग?
2: मेरी एज है 65+।
1: अच्छा, तो ये नॉर्मल भी हो सकता है इस मौसम में, देखिए किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इनको जो
0: जी,
1: सलाह
0: आपको
1: देने
0: मेन
1: चाहिए?
0: चेस्ट में पेन रहता है ये बता रहे हैं आप?
2: पेन पेन पेन पेन नहीं रहता चेस्ट में,
0: जी
2: जैसे हम खांसते हैं नॉर्मल।
0: जी
2: उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 2-3 महीने पहले मुझे खांसी हुई थी, वो तेज खांसी थी,
0: जी जी
2: उससे पहले ये दिक्कत नहीं थी।
0: जी जी
2: अब खांसी तो मेरी ठीक हो गई, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया उसके अकॉर्डिंग ठीक हो गई,
0: जी जी
2: और ट्रीटमेंट भी यहाँ से मैक्स से चला मेरा।
0: तो अभी अभी क्या दिक्कत हो रहा हो बताइए आप।
2: दिक्कत ये है, जैसे कभी कभी खांसी आ जाती है ना नॉर्मल, उसमें
0: जी जी
2: तो कष्ट होता है चेस्ट के अंदर।
0: देखिए, वो तो नॉर्मल है, वो तो सब में ही, जैसे खांसी अगर होता है तो उस टाइम इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस टाइम वो टेम्पररी है वो चीज़। एक सेकंड डॉक्टर साहब ऐड करना चाहेंगे
3: अभी डॉक्टर रेहान ने पहले भी बोला, अगर तेज़ी से खांसी करे, कुछ भी खांसी करे, तो जो चेस्ट के मसल वगैरह हैं उन पे स्ट्रेन पड़ता है, हल्का फुल्का दर्द किसी भी खांसी से हो सकता है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है।
1: जी, आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास मैसेज आ चुका है, नाम तो इन्होंने नहीं लिखा, लिख रहे हैं कि नमस्कार, मेरी बहन को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है और उसे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके साथ उसको छींक भी बहुत ज़्यादा आती है, उसके लिए उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए एक बात, और उसे कई बार घबराहट भी बहुत ज़्यादा होती है और नाक से सांस बिल्कुल नहीं आती है, किस तरह की सावधानी बरतें?
3: ये जो आप अपने सिम्टम बता रहे हैं ये ज़्यादातर एलर्जिक राइनाइटिस के हैं, जो एलर्जी प्रॉब्लम नाक की है कि छींकें आती है, नाक से पानी आता है, नाक से सांस बंद

0: हो जाते हैं। एलर्जी, नाक की एलर्जी और अस्थमा में काफ़ी संबंध है। लगभग 60% मरीज जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होते हैं, पॉलिप होते हैं, उनको अस्थमा भी होता है और अस्थमा वालों को भी नाक के सिम्टम होते हैं। दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। तो जो नाक के सिम्टम हैं उनके लिए तो एंटी एलर्जिक गोलियां, एंटी एलर्जिक स्प्रेज आते हैं, वो लगातार लेने पड़ेंगे। साथ के साथ दमा अस्थमा का जो गोली और इन्हेलर डॉक्टर साहब ने अभी बताए हैं, वो साथ के साथ चलेंगे। दोनों ही इलाज इकट्ठे चलेंगे और टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी है। एलर्जी के टेस्टिंग दो किस्म की होती है, या तो स्किन प्रिक के टेस्ट होते हैं, या आजकल ब्लड टेस्ट भी आ गए हैं। थोड़े महंगे टेस्ट ज़रूर हैं, पर वो एक सिंगल ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, और उसको अवॉइड करने से आपकी चीज़ें कंट्रोल में रह सकती हैं।
1: जी, और इससे डॉक्टर साहब ये भी क्लियर हो जाएगा कि अस्थमा है या नॉर्मल एलर्जी है, इनको ये भी जानकारी हो जाएगी
0: कई
1: टेस्ट
0: बारी
1: के
0: दोनों
1: जरिए।
0: इकट्ठे साथ के, दोनों ही साथ चलते हैं, पर अगर छाती की दिक्कत ज़्यादा है, सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा है, तो वो अस्थमा की लक्षण ज़्यादा है।
1: जी, क्या फेफड़ों की स्थायी बीमारी होती है अस्थमा, या इसे ठीक किया जा सकता है?
2: देखिए, जो अस्थमा जो होता है वो स्थायी तो हम नहीं कह सकते हैं।
1: जी
2: जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर बच्चों में हो रही है तो टाइम के साथ वो ठीक हो जाती है, लेकिन बड़ों में हो रही है तो वो लंबे टाइम तक चलती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंट्रोलेबल डिजीज़ है। अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं और सही तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग आराम से।
1: मतलब जिनको अनुवांशिक है ये बीमारी, वो भी ठीक होने की गुंजाइश बनती है?
2: जी, ठीक तो नहीं कह सकते, बस कंट्रोल रह सकती है बीमारी, आराम से अच्छा जीवन जी सकता है मरीज, जो अस्थमा का मरीज होता है
1: जी।
2: वो।
1: और डॉक्टर साहब एक बात और भी है कि बच्चे हैं, जैसे बड़े हैं वो अपनी केयर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, खेलने भी जा रहे हैं, तो क्या उनको हर वक्त इनहेलर साथ में रखना चाहिए?
2: देखिए, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो स्कूल में जाते हैं, तो पेरेंट्स एक हमेशा ध्यान रखें कि एक इनहेलर जो होता है वो उनके बैग में ज़रूर रखें। साथ में जो उनके टीचर्स हैं स्कूल में, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि ये बच्चा अस्थमेटिक है, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो इस हिसाब से इस इनहेलर का यूज़ करना है वो, ताकि उनको बता सकें, तो प्रिकॉशनरी इमरजेंसी केस में वो संभाल सकें उस चीज़ को।
1: जी, तो बहुत सावधानी बरतिए, और किस तरह की सावधानियां आपको रखनी है, आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
3: मैं रघुबीर सिंह उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
1: जी सर, बताएं क्या सवाल है आपका?
3: डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछना है डॉक्टर साहब।
1: सुन रहे
2: जी,
1: हैं
2: जी।
1: दोनों विशेषज्ञ हमारे सुन रहे हैं, आपको बताएं।
3: एक हमारे गांव का कोई आदमी था, तो वो शुरू में बहुत सिगरेट पीता था, तो अब सिगरेट पीने से उसको क्या हो गया, अस्थमा या एलर्जी कुछ बीमारी हो गया था, अब तो एक्सपायर भी हो गया। अब डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सिगरेट पीने से तो या तो माउथ ओरल कैंसर हो सकता है, तो इस हिसाब से हम सिगरेट पीने से अस्थमा का और ओरल कैंसर का क्या अंतर होगा, आप ये बताइए।
2: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सिगरेट होता है वो हर बीमारी का एक जो इटियोलॉजी होती है, कोज होता है, वो सिगरेट होता ही है। तो सिगरेट माउथ कैंसर भी कोज कर सकता है, सिगरेट लंग कैंसर भी कोज सकता है, और सिगरेट जो है अस्थमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। तो जितना हो सके सिगरेट स्मोकिंग जो होता है हमें अवॉइड करना चाहिए।
1: जी, तो इनको आपने गाइड कर दिया है। आलोका जी का हमारे पास मैसेज आया हुआ है, लिख रही है कि आई एम 54 ईयर ओल्ड फ्रॉम नोएडा। इन्होंने नोएडा से ये सवाल भेजा है। आई एम वेरी एलर्जिटिक और पॉल्यूशन, स्मोक, डस्ट, कोल्ड वेदर एक्सेट्रा, कभी कभी वीजिंग होती है सोते हुए। डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा, क्या इनको करना चाहिए? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ये ले रही हैं, लिखती हैं।
2: दोहराएंगे एक बार सवाल को।
1: जी, इन्होंने लिखा है कि इनको काफ़ी एलर्जेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो है पॉल्यूशन की वजह से, स्मोक की वजह से, डस्ट की वजह से, कोल्ड की वजह से इनको प्रॉब्लम होती है, और सोते समय इनको विजिंग की प्रॉब्लम होती है। तो किस तरह से इनको कंट्रोल करना है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ये ले रही हैं।
2: देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, जो मेन इन्होंने खुद ही बता दिया, ट्रिगरिंग फैक्टर जो डस्ट से एलर्जी होती है इनको, स्मोक से एलर्जी होती है
1: जी।
2: तो इन सब चीज़ों से, ट्रिगरिंग फैक्टर से आपको दूर रहना है, वही सबसे बड़ा इलाज होता है इस चीज़ में।
1: तो क्या ये साथ में जो मेडिसिन ले रही हैं होम्योपैथिक, अगर ये कुछ और भी ट्रीटमेंट लें तो क्या दोनों साथ साथ पॉसिबल है?
2: जी, मेनली अब इनको अगर कंटिन्यू रहता

0: संभावना है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ये ले रही हैं।
1: देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो मेन इन्होंने खुद ही बता दिया, ट्रिगरिंग फैक्टर जो डस्ट से एलर्जी होती है इनको, स्मोक से एलर्जी होती है
0: जी,
1: तो इन सब चीज़ों से, ट्रिगरिंग फैक्टर से आपको दूर रहना है, वही सबसे बड़ा इलाज होता है इस चीज़ में।
0: तो क्या ये साथ में जो मेडिसिन ले रही हैं होम्योपैथिक, अगर ये कुछ और भी ट्रीटमेंट लें तो क्या दोनों साथ साथ पॉसिबल है?
1: जी जी, मेनली अब इनको अगर कंटिन्यू रहता है
0: जी।
2: डॉक्टर साहब, मेरा ये कहना था कि मुझे कुछ दिन पहले खांसी हुई थी, और खांसी के बाद ना, खांसी तो ठीक हो गई है मगर बलगम बहुत आ रहा है, और ये 2-3 साल में लगभग रिपीट हो जाता है। मेरी उम्र लगभग 40 साल है। इस बारे में
3: आपको ये बताना पड़ेगा कि खांसी के साथ बलगम आ रहा है, नाक से गले में बलगम गिर रहा है, किस किस्म का बलगम की बात कर रहे हैं?
2: गले गले में रहता है बलगम बस।
3: तो यानी छाती से खांसी करके अगर बलगम नहीं निकल रहा है तब ये दमा और अस्थमा नहीं लग रहा है, ये ज़्यादातर साइनस की प्रॉब्लम लग रही है कि नाक से अगर पीछे बलगम गले में गिरे तो वो गले में इकट्ठा होता है और फिर आपको वो बार बार साफ करना पड़ता है।
2: घबराने की तो कोई बात नहीं,
3: घबराने की कोई बात नहीं है, पर ये आपको चेकअप करा के इसका जो इलाज है वो करवाना पड़ेगा।
2: नहीं, वैसे वो तो डॉक्टर साहब से चल रहा है इलाज, वो यूं कहते हैं 1 हफ्ता दवाई खानी पड़ेगी, मगर फिर भी मेरे मन में थोड़ी शंका हुई, मैं डॉक्टर साहब से पूछ पता करता हूँ।
3: नहीं, ये साइनस के लक्षण लग रहे हैं, दमे अस्थमा के नहीं लग रहे हैं, जो इलाज है वो लेंगे तो ये कंट्रोल में आ जाना चाहिए।
0: जी, और डॉक्टर साहब लगातार आप सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ लगातार बना हुआ है। तो यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अजीत मान सिंह जी, ENT स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर रेहान चौधरी, मेडिकल ऑफिसर CGHS न्यू दिल्ली। आपसे आज हम चर्चा कर रहे हैं अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन विषय पर। और आपका भी कोई सवाल है तो हमें तुरंत कॉल करें। स्टूडियो के नंबर्स हैं 0112342108 और 0112342108। डॉक्टर रेहान सर, आपसे मेरा सवाल है कि इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस पर क्या थीम रखी गई है और किस तरह से उसका हम जो लोगों को जागरूक कर सकते हैं, क्या कहती है ये थीम?
2: जी, इस बार की जो थीम है वो है एक्सेस टू एंटी इन्फ्लामेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विद अस्थमा स्टिन एंड अर्जेंट नीड। तो इसका मतलब यह है कि जो स्टेरॉइड्स होता है, मेनली एंटी इन्फ्लामेटरी इनहेलर्स स्टेरॉइड्स को बोला जाता है
1: जी,
2: उसका सबको एक्सेस मिले, कि मतलब सबको इजीली प्रोवाइड हो जाए, वो सबको मिले और वो एक अर्जेंट नीड है।
1: तो क्या कहना चाहेंगे कि इनहेलर लेने का सही ढंग क्या है और प्रिकॉशन क्या रखने चाहिए इसके इस्तेमाल में?
2: देखिए, इनहेलर लेने का बहुत ही आसान तरीका होता है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले अब स्ट्रेट नाइन सीधा होकर बैठना है, देन जो इनहेलर पंप होता है उसको हाथ में लेना है, देन माउथ स्पेसर जो होता है उसको यूज़ करिए, माउथ में रख के फिर 2 से 3 बार पहले धीरे धीरे गहरी सांस छोड़नी है, बाहर सांस छोड़नी है, उसके बाद में 2 से 3 पफ लेने हैं, देन उसके बाद में धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है, उसके बाद में थोड़ा होल्ड लेना है 4 से 5 सेकंड का, उसके बाद में धीरे धीरे एक्सहेल करना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो रेगुलर स्टीरोइड यूज़ करते हैं उनके अंदर जो ओरल कैंडिडियासिस, जो कि फंगल इन्फेक्शन के चांस हो जाते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इनहेलर यूज़ करने के बाद में माउथ वॉश करना या गार्गल करना बहुत ज़रूरी है।
1: जी, बहुत छोटी सी बात डॉक्टर साहब ने बताई है, लेकिन श्रोताओं इसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि उससे बहुत सारी जो आपको दिक्कत हो सकती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि समस्या बढ़ सकती है, इसलिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा पूरा ध्यान रखिए। हमारे एक कॉलर फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी, मेरे को अस्थमा है काफ़ी साल से, तो एक बार दमा की शिकायत हो गई थी
1: जी।
3: तो ये किस कारण होती है? और दूसरा सवाल है कि मैं पंप लेती दो दो, एक तो कैप्सूल डाल के लेती, एक दवाई वाला लेती हूँ, तो ये कहते हैं कि

0: पंप ज्यादा नहीं लिए, ये गलत है, नहीं लेना चाहिए, सही है गलत है?
1: जी, आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। आप अपना शुभ नाम बता दें मैम, कहाँ से बोल रही हैं?
0: हम कमलेश्वर में ब्लाइंड हूँ।
1: अच्छा
0: ग्रेटर
1: अच्छा
0: नोएडा
1: जी जी
0: बोल
1: कोई बात नहीं। हाँ बताएं, कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: जी, ग्रेटर नोएडा से।
1: ग्रेटर नोएडा से। जी डॉक्टर साहब, हमारे दोनों विशेषज्ञ आपको सुन रहे हैं और आपका सवाल जो है उसका जवाब जरूर देंगे। बताएं और कुछ कहना चाह रही थी आप?
0: नहीं, और सर मैम मेरे सर में ना इतना दर्द होता है, मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहती, सर में बहुत दर्द होता है, रात में नींद नहीं आती, दिन में आती, इसका क्या कारण है?
1: जी
0: आंखों दिन नींद में भरी रहती है और रात को आती नहीं है, धूप में खुल
1: क्या
0: जाती,
1: ये
0: सर
1: भी कोई अस्थमा का लक्षण है डॉक्टर साहब, बताएं
2: आपका
1: क्या?
2: जो सर दर्द है, नींद नहीं आती है, इसका अस्थमा से कोई जोड़ नहीं है, अस्थमा का कोई लक्षण नहीं है। अगर आपको जुकाम भी रहता है और आँख के आसपास भारीपन रहते हैं, तो हाँ ये साइनस का हो सकता है जो कि अस्थमा के साथ जुड़ा हो सकता है। जहाँ तक अस्थमा का आपका पंप सही तरीके से लेना है, ज़्यादा है या कम है, डॉक्टर रेहान जवाब दे देंगे।
3: देखिए
0: मैं
3: जी
0: देती हूँ मैडम, पंप
3: जी जी बताइए
0: सांस का।
1: जी, थोड़ा जोर से बताएं डॉक्टर साहब, समझ नहीं पाए क्या कहना चाहते हैं।
0: पंप लेती हूँ सांस में, दो पंप लेती हूँ, एक तो कैप्सूल डाल के, एक दवाई वाला,
3: जी,
0: एक छोटी सी गोली खाती हूँ। तो मैंने टेस्ट भी कराया था तो बोलते हैं मेरे सीने में भी दर्द होता है तो नॉर्मल आता है, सीटी स्कैन कराती हूँ तो मैं सब नॉर्मल आता है मेरा, तो
3: तो
0: सीने में दर्द भी रहता है मेरे।
3: जी, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि जो पंप होता है वो बिल्कुल सेफ है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सही तरीके से लेना है और रेगुलर लेना है।
0: अच्छा
3: हाँ, क्योंकि यही सबसे सबसे जो बेहतरीन इलाज है अस्थमा का वो पंप ही होता है, तो पंप आपको रेगुलर लेना है और इसको अवॉइड नहीं करना आपको बिल्कुल भी।
1: जी, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, इनको आपने बता दिया है। हमारे पास मैसेज आया हुआ है, ये छवि जी का मैसेज है, लिख रही हैं, आई एम छवि चौधरी फ्रॉम जयपुर राजस्थान। कैन वी डू हार्श स्पोर्ट्स इन अस्थमा, डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर एंड रेस्क्यू इनहेलर?
3: देखिए, जो इनका पहला सवाल है हार्श स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रेनस एक्सरसाइज तो बेसिकली अवॉइड ही करनी चाहिए
1: जी।
3: क्योंकि ये अस्थमा का अटैक हो सकता है। दूसरा इन्होंने सवाल पूछा है कंट्रोलर और रेस्क्यूअर, ये काफ़ी बढ़िया सवाल है। जो कंट्रो एक तो होता है रिलीवर मेडिसिन, रिलीवर मेडिसिन वो होती है जो कि जब अस्थमा का अटैक होता है उस टाइम हम यूज़ करते हैं, जैसे साल्ब्यूटामोल हो गया, वो रिलीवर मेडिसिन होता है।
1: जी
3: एक होता है कंट्रोलर, कंट्रोलर वो होता है कि अगले अटैक को होने से रोकता है या लंबे टाइम तक डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। तो उसमें बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी स्टीरोइड्स जो कि इन्फ्लामेटरी जो इनहेलर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं।
1: जी, तो बहुत सारी बातें श्रोताओं आपको जानने को मिल रही है, उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: ओम शांति।
1: ओम शांति सर, कहाँ से बोल रहे हैं?
4: मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी सर बताएं क्या
4: मुझे
1: सवाल
4: पूछना
1: है
4: आपको? है कि ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस में क्या अंतर है, और ब्रोंकल अस्थमा का कोई वैक्सीन भी बनाया कि नहीं? ओम शांति।
1: जी
3: देखिए, जैसा कि आप वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी तक तो
2: अभी
3: कोई
2: तक नहीं है,
3: अभी तो कुछ है नहीं, हो सकता है आगे इस पे अभी रिसर्च चल रही हो, आगे आगे आ जाए।
1: जी, तो जागरूक लगातार हम आपको कर रहे हैं कि किस तरह से आप अस्थमा से बच सकते हैं और क्या प्रिकॉशन आपको बरतने हैं और किस तरह से आपकी जीवनचर्या हो और क्या क्या आपको खुद सावधानी बरतनी है, क्योंकि हम तो सिर्फ आपका मार्गदर्शन अपने विशेषज्ञों के माध्यम से करवा सकते हैं, लेकिन आगे जो कुछ करना है वो आपको ही करना है। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मौसम बदलता है और खान पान, ख़ास करके मुझे लगता है कि जिनको अस्थमा की शिकायत है, खान पान पर भी कुछ ध्यान देने की ज़रूरत होती है क्या, कि ठंडी चीज़ों से बचना है? गर्मी का समय है तो लोग फ्रिज का पानी नॉर्मली घर में घुसते ही पी लेते हैं, क्या इन सब चीज़ों से बचना है?
3: जी, बिल्कुल, इन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं बहुत प्रोन होते हैं इन चीज़ों से। अगर थोड़ी भी ठंडी हवा लग गई या फिर सुबह मॉर्निंग में जैसे ठंडी हवा होती है, वो ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं।
1: जी
3: ठंडा पानी हो गया, वो एक तरीके से ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। तो रेगुलर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खाइए, रेगुलर हल्का फुल्का वॉक कीजिए, तो डिजीज़ कंट्रोल में रहती है, और प्रॉपर इस्तेमाल करिए इनहेलर का जो रहता है।
1: जी, लेकिन अब एक समस्या आती है कि क्या अगर मेडिसिन शुरू हो गई है तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी, या क्या कितने समय तक ट्रीटमेंट होता है, कुछ ऐसा भी नियत होती है चीज़ें?
3: देखिए, अगर लंबे टाइम तक, जैसे जो गाइडलाइन जो कुछ कहती है कि अगर 5 दिन से ज़्यादा हफ्ते में अगर उसको सिम्टम्स

0: तो उनको उनको कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो वो मेडिसिन छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो अगर एक्यूट अटैक आता है जब भी, तो उस टाइम इनहेलर का प्रॉपर इस्तेमाल करें
1: जी। और हमारे पास आया हुआ है मैसेज, ये है, लिख रहे हैं, हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम तो नहीं लिखा इन्होंने, हाँ मेरा नाम वीरू बख्शी है और अपनी उम्र ये 62 साल लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि मेरे साथ एक माइनर कुछ इन्होंने दिक्कत बताई है कि इनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा क्यों है जानना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ मौसम का असर है या ऐसा कुछ इन्होंने बाकी दिक्कतें नहीं लिखी हुई हैं?
0: देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि सांस लेने में दिक्कत है
1: जी,
0: तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक बार आप जल्दी से जल्दी फिजिशियन से मिलिए, वो एक बेसिक टेस्ट होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उससे वो पता चल जाएगा कि बेसिकली ये सांस की बीमारी है या कुछ और कारण है
1: जी। घबराहट भी इन्होंने लिखी हुई है कि इनको घबराहट होती है, ऐसा किस वजह से होता है, मतलब अस्थमा जैसी कोई समस्या तो नहीं है, इनको ये जानना चाहते हैं।
0: उसी को रूल आउट करने के लिए बेसिकली आपको वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो करवाना चाहिए जल्दी से जल्दी
1: जी। तो श्रोताओं, लगातार आप सभी का मार्गदर्शन यहाँ पे डॉक्टर साहब कर रहे हैं। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080, 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी चर्चा आप लोगों से जारी है, क्या कहना चाहेंगे कि इस समय जो गर्मी का मौसम है और कैसी सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि खान पान आपने बता दिया है, और कैसी दिनचर्या हो, क्या व्यायाम भी होना चाहिए, किस तरह का व्यायाम होना चाहिए?
2: समझने व्यायाम
1: एक्सरसाइज किस टाइप की?
2: एक्सरसाइज जैसे अभी पिछला सवाल का जवाब दिया था, हार्श स्पोर्ट्स, तेज एक्सरसाइज से जब अक्यूट अस्थमा हो रहा हो वो अवॉइड करना चाहिए। जेंटल व्यायाम ज़रूरी है क्योंकि उससे वो फेफड़ों की पार बढ़ेगी। अगर जो कहते हैं आधा घंटा चलना या जो एरोबिक है, बहुत हार्श नहीं करें, पर रेगुलर एक्सरसाइज से अस्थमा के कंट्रोल में काफ़ी फ़ायदा आएगा
1: जी। हमारे कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: ओम शांति।
1: ओम शांति।
3: हाँ, मेरा, मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। मेरा
1: जी,
3: एक सवाल का उत्तर छूट गया था।
1: जी, अभी बात हुई थी आपसे, बताएं क्या सवाल छूट गया था आपका?
3: जी, मैंने कहा था कि ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस में क्या अंतर है,
1: क्या अंतर है, आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके का अंतर है। और देखिए, संपर्क तो श्रोताओं इनसे टूट गया है, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे, हो सकता है कि ये सुन ले रेडियो पर कि किस तरीके की समस्या है।
0: देखिए, जो ब्रोंकाइटिस जो होता है वो बेसिकली टेम्पररी होते हैं, और उसमें जो इन्फ्लामेशन होता है, जो सूजन होती है, वो रिवर्सिबल होती है। जबकि जो ब्रोंकाइटिस है वो एक क्रोनिक बीमारी है, और उसमें जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। तो मेजर डिफरेंस ये है दोनों में, एक टेम्पररी है, एक परमानेंट है।
1: तो चलिए, आपका जो सवाल था उसका जवाब भी आपको मिल गया है, और संयोग है कि आपका फोन मिल गया दोबारा से। अक्सर ऐसा होता है कि फोन लाइन मौजूद नहीं रहती है, और मतलब मौजूद तो है लेकिन मिलता नहीं है फोन जल्दी से, तो ये समस्या आपकी दूर हो गई है। और अगला जो हमारे पास मैसेज है, लिख रहे हैं दोनों डॉक्टर साहब और एंकर मैम को गुड आफ्टरनून। मैम, अस्थमा में पॉल्यूशन का क्या रोल है? अपने क्षेत्र में स्वच्छता रखने से क्या कोई फर्क पड़ता है, कृपा करके बताएं। नरदेव सिंह चौहान जी, कोटद्वार उत्तराखंड से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं।
0: देखिए, जो साफ सफाई अगर रखेंगे हम तो डस्ट होगा, जो पॉल्यूशन होगा वो कम होगा। तो बेसिकली जो ट्रिगरिंग फैक्टर होंगे वो हम कम कर रहे हैं, तो उससे अस्थमा बेहतर रहेगा, जिससे कि अस्थमा कंट्रोलेबल रहेगा
1: जी।
0: तो साफ सफाई का तो हमें हमेशा ही विशेष ध्यान रखना चाहिए,
1: ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगला सवाल हमारे पास आया हुआ है, मैसेज है हमारे पास। गुड आफ्टरनून जी, मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से लिख रहे हैं। आज इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए धन्यवाद। मेरा सवाल है कि टीबी और अस्थमा में क्या अंतर है, और मेरा लड़का 11 साल का है, 3 साल से नाक से ब्लड आता है, ESI में उसका सारा इलाज हुआ है, मगर नाक जब बंद होने लगती है तो कोल्ड की वजह से ब्लड आने लगता है, किस तरह से उसका क्या इलाज किया जाए?
2: आपने दो सवाल पूछे हैं, पहला तो कि टीबी और अस्थमा में क्या फ़र्क है। टीबी एक छाती की इन्फेक्शन है, अस्थमा से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। अस्थमा फेफड़ों की हाइपर रिएक्टिव प्रदूषण वगैरह की वजह से होता है।

0: तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों का अलग अलग सिवाय के दोनों में खांसी होती है और कोई सिमिलरिटी नहीं है।
1: देखिए एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जो अस्थमा होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, जबकि टीबी जो होता है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है ये चीज़।
0: और जहाँ तक नक्सीर का सवाल है, वो अस्थमा वाले अस्थमा से कोई ताल्लुक है नहीं, पर उसका अगर कहीं भी खांसी जुकाम हो, नज़ला हो, तो नाक के अंदर थोड़ा ये ब्लड बढ़ जाता है, और छोटे बच्चों में छोटी नक्सीर अक्सर होती है। तो यही है कि खासकर गर्मियों में उसका थोड़ा ल्यूब्रिकेशन रखना चाहिए, तो क्रीम या कुछ लगाएं कि आगे सूखापन नहीं रहे और नाक में उंगली वगैरह नहीं डालें।
2: जी अगला हमारे पास मैसेज आया हुआ है, मनीषा जी रांची से लिख रही हैं कि इनकी उम्र 75 वर्ष की है और लिख रही हैं कि मैं हृदय रोग की मरीज़ हूँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, मुझे नेबुलाइजेशन और इनहेलर दोनों दिया गया है, क्या ये एक है या अलग अलग है?
1: देखिए मेजर डिफरेंस जो नेबुलाइजर और इनहेलर में जो होता है, इनहेलर जो होता है बेसिकली पंप होता है जिसको पंप की मदद से हम लेते हैं, जो नेबुलाइजर होता है वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको एक मशीन में डाला जाता है और उसके बाद में उसको भाप दी जाती है।
2: जी तो इसका अलग अलग प्रयोग है और दोनों ही ज़रूरी होता है,
1: दोनों ही ज़रूरी
2: स्थिति है, उम्र भी ज़्यादा है, 75 वर्ष की उम्र है, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं
1: जी
2: है
1: जी।
2: तो आप निश्चिंत रहें, डॉक्टर साहब ने आपका मार्गदर्शन कर दिया है।
0: चीज़ जो आप कह रहे हैं कि हृदय के मरीज हैं, डॉक्टर साहब ने बोला था दो किस्म की दवाइयाँ, एक जो कंट्रोल करती हैं प्रिवेंट, जो दवाई कंट्रोल करती है जिसे ब्रोंको डायलेटर कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लेने से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उससे हृदय में असर पड़ सकता है, वही एक चीज़ के लिए आपको संपर्क रहना चाहिए।
2: जी बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताई है, उम्मीद है कि आप सभी इसको नोट डाउन करिए ताकि आप भूल ना जाएं कि आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ, अस्थमा विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दो दो विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लगातार आप सभी का जो सवाल है वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। हमारे पास अगला मैसेज आ चुका है रमेश कुमार जी का, न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं, नमस्कार एवरीवन, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सबको बहुत धन्यवाद। कैन अस्थमा पेशेंट कैन लीड नॉर्मल लाइफ?
1: जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अस्थमा पेशेंट होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से मेडिकेशंस लें, सही तरीके से लें, सही टाइम पे लें। जैसा कि हम देखते हैं ओपीडी में, मैंने देखे हैं 85 ईयर्स 90 ईयर्स के पेशेंट भी आते हैं, अस्थमेटिक हैं, वो पूरी लाइफ लॉन्ग अच्छे से दवाई लेते हैं और अच्छा जीवन जी लेते हैं वो लोग।
0: जी तो जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो सीजनल अस्थमा होता है जो ज़्यादातर पोलन से रिलेटेड होता है, जैसे दिल्ली में मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर, और दिल्ली में उसके बाद अब प्रदूषण से दशहरा के बाद जनवरी तक चला है पिछले साल, वो उस किस्म के अस्थमा में जब नॉर्मल हालात हो जाते हैं, जैसे अब मई में एक दो हफ्ते में बिल्कुल पोलन ख़त्म हो जाएगा, तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ आदमी लीड कर सकते हैं दवाइयों के बगैर भी। सिर्फ जब ये ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं तब दवाई लेनी पड़ती है, बाकी टाइम वो जैसे बोला था हार्ट स्पॉट्स भी कर सकता है।
0: हाँ, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, नेजल पॉलिप साइनसाइटिस और एलर्जी का अस्थमा से क्या रिलेशन है?
2: नेजल एलर्जिक राइनाइटिस जो कि नाक की एलर्जी होती है उसकी वजह से नेजल पॉलिप्स होते हैं, ज़्यादातर आसपास जो फंगस होते हैं उसके अगेंस्ट जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उससे नाक में पॉलिप होते हैं। नाक के पॉलिप मतलब नाक के अंदर अंगूर जैसे छल्ले बन जाते हैं, नाक बिल्कुल बंद रहती है, स्नीजिंग होती है, साइनसाइटिस जहाँ जो नाक के आसपास साइनसेस में बलगम इकट्ठी हो जाती है। इनके दमा अस्थमा से दो ताल्लुक है, एक तो पॉलिप्स और अस्थमा, ये दोनों ही चीज़ें बाहर के ट्रिगर फैक्टर से प्रवोक होती हैं। लगभग 60% चांस है कि मरीज अगर जिसको पॉलिप है उसको अस्थमा भी होगा, प्लस अस्थमा वाले मरीज को पॉलिप्स भी हो सकते हैं। दूसरा, साइनस से अगर रेशा गले में गिर के छाती में गिर रहा है तो वो भी फेफड़ों को इरिटेट करके दमे को प्रवोक कर सकता है।
0: जी,
2: एलर्जी दोनों में ही रहती है, ट्रिगर फैक्टर एलर्जी दोनों में ही कॉमन रहता है।
0: जी डॉक्टर साहब, लंबी खांसी चल रही है और सूखी खांसी है तो अक्सर लोग फिक्र में पड़ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कहीं ये अस्थमा का लक्षण तो नहीं है?
2: ये पेशेंट मरीज से पूछना पड़ेगा, लंबी खांसी है, सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है, खांसी के साथ सीटी बजती है नहीं बजती है, खासकर बलगम है या सूखी है, लेटते हुए, सारी खांसी ज़्यादातर लेटने से ख़राब होती है, चाहे साइनस का रेशे बलगम से हो, अस्थमा से हो। तीसरा फैक्टर खांसी का है पेट का तेजाब ऊपर आके जो

0: गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है, इन सबको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लक्षण है सांस में दिक्कत और सीटी। क्यों
1: जी जी, ये एपिसोडिक रहता है, ये तीनों सिम्टम जो रहते हैं एपिसोडिक रहते हैं।
0: एपिसोडिक अगर अकेले लंबी चल रही है बिना इन तीनों के सिम्टम के, तब ये अस्थमा
2: नहीं हो सकता जी। अब डॉक्टर साहब, सवाल ये उठता है कि हृदय रोग में और अस्थमा में, दोनों में ही दिक्कत होती है सांस लेने में और हार्ट में, तो कैसे इसका डिफरेंस कैसे किया जाए?
1: जी जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपका। मेनली जो कार्डियक की वजह से अगर सांस लेने में दिक्कत है, तो वो होता है कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। जबकि जो अस्थमा होता है उसमें फेफड़ों में इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत रहती है। तो बेसिकली अस्थमा के केस में ये सीटी की आवाज़ रहता है, जबकि कार्डियक केस में सीटी की आवाज़ नहीं बल्कि शरीर में सूजन रहती है, पाँव में सूजन रहती है। वो अलग फैक्टर्स होता है, इन दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं उस चीज़ों से।
0: और उस पे खड़खड़ की इसी भी आवाज़ रहती है छाती पे।
1: जी जी जी,
0: सीटी की जगह।
1: जी जी, ये दोनों में डिफरेंस करने के लिए, और बाकी जो स्पेशलिस्ट के पास जाके जो टेस्ट होता है वो इम्पोर्टेंट है ही, वो डिफरेंस कर देगा उस चीज़ को।
2: जी, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे अस्थमा के पेशेंट हैं उनको किस तरह की और सावधानी रखनी चाहिए? क्योंकि जैसा कि हमने मौसम का भी आपसे जिक्र किया कि मौसम बदल रहा है, और हमारे जो श्रोता थोड़ी देर में हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, एक बार शॉर्ट में उनको बता दीजिए कि किस तरीके से इस मौसम में उनको सावधानी रखने की ज़रूरत है।
1: देखिए, अभी जो मौसम है, मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, मौसम थोड़ा बदल रहा है, थोड़ी गर्मी हो रही है, काफ़ी सीजनल है
2: जी।
1: तो इस सीज़न में पोल्यूशन भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, उसके साथ साथ जो एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनका भी अभी एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि बाहर जब भी निकलें थोड़ा मास्क लगाकर थोड़ा परहेज रखें इन चीज़ों से। बाकी जो इनहेलर होता है वो हमेशा अपने साथ रखें, जब भी उनको अटैक आए उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें। और अस्थमा जो है एक कंट्रोलेबल डिजीज़ है, इससे बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं है।
2: जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप?
0: ये सबसे बड़ी चीज़ है जो एलर्जन है, अगर पता लग जाता है एलर्जी टेस्ट से कि क्या आप कुत्ते से एलर्जी है, बिल्ली से एलर्जी है, किसी फूड से एलर्जी है,
1: या स्ट्रॉन्ग परफ्यूम,
0: कई किस्म की बर्मुडा ग्रास और आसपास घास होती है, उनसे अवॉइड करना सबसे ज़रूरी है। आपने मास्क के बारे बोला था, यही है कि थोड़ा सबको मास्क पहनने की आदत तो हो ही गई है, पर अगर प्रदूषण में जाएं तो वो N95 अगर मास्क पहने तो बचाव हो सकता है, पर फिर दूसरी प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि वैसे ही उनको सफोकेशन है तो मास्क पहना नहीं जाता।
1: मास्क तभी पहने जब वो एक्सपोजर एनवायरनमेंट में जा रहे हों। जी जी
2: जी, तो बहुत ही यहाँ पे उम्दा चर्चा रही है कि उम्मीद है कि आपको बहुत सारे यहाँ पे लाभ जानने को मिले हैं, और जो भी पेशेंट हैं उन्होंने मुझे लगता है कि बहुत गौर से कार्यक्रम सुना होगा। अगर आपका कॉल नहीं लग पाया है तो भी जानकारी आप तक पहुँची है तो उसका लाभ आपने ज़रूर लिया होगा। चलते चलते बस यही कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, क्योंकि आरोग्यम परम धनम। बाकी धन के प्रति हम सजग रहते हैं, लेकिन इस धन के प्रति हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए, आपका साथ देने के लिए लगातार रेडियो डॉक्टर आपके साथ है, इसका लाभ लीजिए और कार्यक्रम सुनते रहिए। आपको बता दें कि आज हमने जिस विषय पर चर्चा की वो था अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद थे। आप थे डॉक्टर अजीत मानसिंह जी, ENT स्पेशलिस्ट न्यू दिल्ली, और डॉक्टर रेहान चौधरी जी, मेडिकल ऑफिसर CGHS न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई।
0: आपका धन्यवाद कि हमें बुलाया।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, और हमारे श्रोताओं का भी जो हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आओ बालो बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालो अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। कसम सुनते रहिए 102.7 एफएम रेनबो।

हेलो जी, स्वागत है जी एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल ते, क्योंकि जी प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो जलंधर, उसकी शुरुआत हो चुकी है जी। और रेनबो की कड़ी के मुताबिक ठीक 4:01 हो चुके ने। सो आज दे इस प्रोग्राम दे विच तुहाडा दोस्त विपिन सुमन तुहाडे नाल होएगा ते करांगे गलबात अज पंछियां दी, जानवरां दी, लेकिन सिर्फ अखाणां दे विच, मुहावरियां दे विच। नहीं नहीं, जाना नहीं है जी कितने, जाण दा तां कह रहे ने, कहिंदे कि जाओ फोन उठाओ ते नंबर मिलाओ 0181 2342174, यानी 0181 2342174। पंजाब दियां जो अखाणा ने, पंजाब दे जो मुहावरे ने, पंजाबी भाषा च जो असी आम यूज़ करते हैं, सो वो अखाणा दा जन्म किवें होया, मुहावरियां दा जन्म किवें होया, उहदे बारे विच जुड़ी हुई गलबात है। ज़्यादातर पंछियां ते जानवरां दे उत्ते जिहड़ी इह आधारित रहेगी। सो हिस्सा लैण दे लई कॉल करो जी

गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर मगर

0: दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं।
1: बिल्कुल जी, शोर मचाते हैं और शोर जिहड़ा जी इस वेले FM रेनबो दे टेलीफोन दे उपर मचया पिया, क्योंकि 0181 2342 174 नंबर नूं डायल करके साडे दोस्त स्टूडियो तक अपनी पहुँच बना रहे ने ते साडे नाल अपने फरमाइशी गीत जिथे पूरे करा रहे ने उत्थे ही अज दे टॉपिक यानी कि पंजाब दीआं अखाणां मुहावरे उहनां दे बारे दे विच दस रहे ने कि जी ये मुहावरा क्यों ते कित्थों बणिया सी। और मुहावरा सिर्फ मैं पुछांगा जी, मैं तुहानूं दस्सांगा इक मुहावरा, तुसीं दस्सणा है जी कि इह जिहड़ा मुहावरा है इह क्यों बणिया जां किवें बणिया या की रीज़न है इसके बनन का और इस मुहावरे का मतलब की होंगे। सो खैर साडे अगले कॉलर दोस्त जुड़ चुके हैं, आओ जी करते हैं उन्होंने गलबात। हैलो,
2: हैलो, नमस्कार सर।
1: सर बहुत प्यार भरी नमस्कार जी, कौन जनाब गल कर रहे ने?
2: मैं सर गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया बोल रहा हूँ।
1: ओम जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, की हाल चाल ने?
2: मैं भी आपका स्वागत करता हूँ और सबसे पहले तो मैं टेलीफोन का स्वागत करता हूँ कि 2342 174 पर हमारी जो फोन की घंटी बजी इसके लिए उनका भी धन्यवाद और आपने अटेंड किया इसलिए
1: धन्यवाद। जी जी जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने डायल किया, आपका भी धन्यवाद। एंड हम जी बात करते हैं आपको, मैं एक जो बुझारा तो नहीं है, ये अखाण है जिसको हम कहावत भी बोलते हैं, एक कहावत है जी पंजाबी दे विच, मज अगे बीन बजाउणा।
2: मज अगे बीन बजाउण दा मतलब हुंदा है जी नूं ज्ञान ना होवे ना तो उहनूं आपां ज्ञान देण दी कोशिश करिए। जिहनूं मान लो जिवें कहिंदे ना

0: पता नहीं जी, कही जाते कि चाहे खुशी देता है चाहे गम देता है, पर मेरे दोस्त इस वेले जरूर कहते होंगे कि जदों भी यार मुंडा इतने आता है ना, हैलो जलंधर च, कहते सानू खुशियां दा मौसम हर दम देता है। बिल्कुल जी, हसते रहना ते मैं तुहानू हसाते रहना, क्योंकि प्रोग्राम हैलो जलंधर जिसनों तुसीं इंजॉय कर रहे हो। फिलहाल साढ़े अगले कॉलर दोस्त साढ़े नाल जुड़ चुके हैं जी, जो सानू दसणगे एक पंजाबी कहावत दे जन्म की कहानी और वह कहावत क्यों बनी है तो उसका मतलब की है। हैलो जी, बहुत बहुत स्वागत जनाब।
1: बिपल सुमन जी नमस्कार जी।
0: प्यार भरी नमस्कार जी। जनाब की हाल चाल?
1: बहुत बढ़िया जी, मैं राम लवाया शर्मा पिंड समराई जिला जिंदर तो बोल रहा जी।
0: राम लवाया जी, बहुत बहुत स्वागत है जी दिल दियां गहराइयां तो। की हाल चाल ने
1: सुमन साहब? थोड़ा भी बहुत बहुत स्वागत है जी, साडे नगर समराई च आवाज दे जरिए तुसीं पहुंचे हैं जी, बहुत बहुत थोड़ा स्वागत है पिंड
0: जी। जी जी, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अज तुहानूं पता, अज आपां कहावतां दा एक जिहड़ा दौर शुरू कीता जी, अज अखाण पुराने जो है ना पंजाबी जप सुणदे।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, इह पुराणी सभ्यता आपणी पंजाब दी जिहड़ी हैगी आ, इह बच्चा रखदी है जी सारी
0: जी। अच्छा जी, तुहाडे वास्ते एक अखाण है, तुसीं मैनूं दसणा है क्यों बनाया गया ते इहदा मतलब की है ना। तुहाडे वास्ते अखाण है जी, अकल वड्डी के मझ।
1: ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਸਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਸ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
1: ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਅਕਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਕਿ ਮੱਝ ਆ, ਵੀ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਆ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ
0: चार दिन साडी मझ ने दुध नहीं दिता जी,
1: बिलकुल
0: पठे नहीं खादे जी, ओने खल नहीं खादी, ओने ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਕਿ ਮੱਝ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬਾਰ

0: वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युववाणी। मैं हाँ आरजे भूमिका,
1: ते मैं हाँ आरजे नेहा। ते दोस्तों वेला हो गया साढ़े आज दे पहले सेगमेंट दा, ते सेगमेंट है चक दे इंडिया।
0: क्रिकेट दे मैदान तो लैके हॉकी दी शान तक, कबड्डी दी मिट्टी दी खुशबू तो लैके फुटबॉल दे रंगीले जहान तक, हर खेड दी हर अपडेट हुण तुहाडे लई।
1: ते दोस्तों तैयार हो जाओ क्योंकि अज दा शो होण वाला है फुल ऑन एक्शन नाल भरपूर। सोचो एक पासे क्रिकेट दे मैदान च ठग्यां दी बरसात, दूजे पासे फुटबॉल च आखरी मिंट दा गोल, ते उत्थे ही टेनिस कोर्ट ते रिकॉर्ड टुट रहे ने। दुनिया दे हर कोने च खेडां दा जबरदस्त शो जोर चल रहा है, तां फिर देर किस गल दी। चलो शुरू करिए अज दा ये स्पोर्ट्स सफर।
0: दिल्ली कैप्टनस नूं अपने घरेलू मैदान ते लगातार 3 हारां दे सिलसिले नूं खत्म करन लई मंगलवार नूं इंडियन प्रीमियर लीग च चेन्नई सुपर किंग्स विरोध होण वाले मैच च खेड दे तिन्नां विभागां च चंगा प्रदर्शन करना होएगा।
1: ते इंडियन प्रीमियर लीग 2026 इस वेले अपने चरम ते है। हर मैच नाल एक्साइटमेंट वध रही है ते प्ले ऑफ दी रेस हो गई है होर वी टफ। दोस्तों नौजवान खिडारी साय सुदर्शन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वड्डा रिकॉर्ड बनाया है, अपने पहले 50 मैचों च सब तो वध रन।
0: दिल्ली ते चेन्नई दोवां टीमां ने 9 मैचों च 8-8 अंक ने। हुण जदों उन्हां दे 5 मैच बाकी ने तां इक छोटी जिही गलती भी भारी पै सकदी है। दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार 3 हारां तों बाद शुक्रवार नूं जयपुर च खेडे गए मैच च महत्वपूर्ण जित हासिल कीती है।
1: दोस्तों इंडिया दे विच आईपीएल दा क्रेज ही इन्ना हुंदा है कि लोकी दा बिल्कुल पागल हो जांदे ने, ते आपां सुणदे आं रिशिका आईपीएल दे बारे की कहना चाहुंदी है ते उन्हां नूं आईपीएल दा किन्ना क्रेज है।
2: मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ और मेरे सारे दोस्तों को जब भी मैं आईपीएल की बात करती हूँ एकदम क्रेजी हो जाते हैं। तो मैं बता दूं कि आज का मैच काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। पॉइंट्स टेबल में जगह बनाने के लिए टीम्स अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। आज के मैच में नज़र रहेगी कि प्लेयर्स पर जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फुटबॉल की तरफ। इंटरनेशनल फुटबॉल ने एक बार फिर अपनी टीम के लिए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया। उनका एक्सपीरियंस और स्किल अभी भी दुनिया भर के फैंस को इम्प्रेस कर रहा है।
1: ते दोस्तों क्रिकेट दी अपडेट्स हाले खत्म नहीं हुई हैं। छोटा जा म्यूजिकल ब्रेक लेना तो बनता है, गल्लां बातां तो साड़ियां चलदियां रहनगियां। इंजॉय करदे हैं एक प्यारा जा ट्रैक, उस तो बाद फिर मिलते हैं थोड़े नाल।

0: ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ। ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਨਸ ਇਸ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੂਮਿਕਾ
1: ਨੇਹਾ, ਅੱਜ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।
0: ਵਾਓ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਰਿਸ਼ਿਕਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੀ ਹੈ।
2: फुटबॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब भी मैं फुटबॉल की बात करती हूँ मेरे सारे दोस्त मेरे साथ आ जाते हैं और हम सब मिलकर रात भर मैचेस देखते हैं।
0: इस दे नाल ही भारत च SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 भी जल्दी शुरू होने वाली है जो खास करके महिला फुटबॉल दी लई वड्डा मंच है। दुनिया भर च फुटबॉल सिर्फ खेड नहीं एक जज्बा बन चुका है।
1: जयपुर च महिला T20 टूर्नामेंट की शुरुआत भी हो रही है। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होएगा जिस च कई टीम हिस्सा ले रही ने। इस तरह के टूर्नामेंट का सब तो वड्डा फायदा है कि सिलेक्टर ते कोचा की नज़र नवे टैलेंट ते पैंदी है। चंगा प्रदर्शन करन वाले खिडारियों नू अगे जा के वड्डियां लीगां जा नैशनल टीम च मौका मिल सकदा है।
0: ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਦਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ, ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਮਿਆਮੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ 2026 ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਚ ਸ਼ਰਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟੌਪ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਵਰਲਡ ਸਨੂਕਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
2: यंग सेंसेशन अपनी ज़बरदस्त फॉर्म में है और लगातार टूर्नामेंट्स में इम्प्रेसिव जीत हासिल कर रहे हैं। हॉकी की बात करते हैं, रीसेंट मैचेस में स्ट्रॉन्ग गेम प्ले दिखाया और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पोजीशन और मजबूत की।
1: होर खेडा दी अपडेट्स लैके आवांगे पर उस तो पहला लेंदियां एक छोटा जा म्यूजिकल ब्रेक। इंजॉय करो ये ट्रैक ते इस तो बाद मिलदे हां।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निर्देशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

ज्ञान है, हारमोनियम, सितार, पियानो, तबला, फ्लूट और कई और साथ ज़्यादा। जी हाँ बिल्कुल जी, एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन के बारे गल करन जा रहे हैं जी, जिन्हों का नाम है जी नौशाद जी। इन्हों का नाम हर कोई जानता ही है, इन्होंने जिन्ना का काम किया है और जिन्ने की फिल्मों के इन्होंने गाने लिखे ने और जिन्ने भी सिंगर ने इन्हों के गाने गाए ने बहुत ही बखूबी गाए ने और सारे ही गाने बहुत ही वधिया ने और सारे सुनते ने, हर वेले सुनते रहते हैं और कई इन्होंने लिखता भी कीतिया ने, मतलब अपनी बुक्स भी लिखी हुई हैं, उस दे बारे भी सब कुछ आप विस्तार नाल गल्लां बातें करांगे अज इन्हां दे बारे, नौशाद जी दे बारे। नौशाद जी भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक नाम है। वह उन्हां गिनती दे संगीतकारां विच्चों ने जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत नूं फिल्मां विच इस तरह पेश किया कि वह लोगों के दिलों विच वस गया। नौशाद जी का संगीत सिर्फ सुनने वालों नूं मनोरंजन ही नहीं दिंदा सी, सगों उन्हां नूं संगीत की गहराई और रूहानीयत नाल भी जोड़दा सी जी। उन्हां दा जन्म 25 दिसंबर 1919 नूं लखनऊ विच होया। लखनऊ की संगीतक अते सभ्याचारक वातावरण ने उन्हां दे अंदर संगीत लई प्रेम जन्मिया। उन्होंने बहुत सख्त मेहनत करके फिल्म इंडस्ट्री विच अपना नाम बनाया। नौशाद जी का बचपन आम परिवार विच बीतिया। उन्होंने पिता मुंशी वाहिद अली संगीत के खिलाफ सन, पर नौशाद जी नूं बचपन तो ही संगीत नाल बहुत ज़्यादा प्यार सी। वो अक्सर चुपके चुपके संगीत सीखने जाते हैं। लखनऊ के थिएटर और म्यूजिकल कल्चर ने उन्होंने प्रभावित किया। उन्होंने हारमोनीयम ते होर कई साज सीखे। नौशाद जी का संगीत लई जज्बा इन्ना वड्डा सी कि वह घर छड़ के मुंबई चले गए तां जो अपने सपने पूरे कर सकन। मुंबई जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और होर भी कई गल्लां करांगे, गल्लां बहुत सारियां हो जाणियां, पर नाल नाल इन्हां दे गीत जो इन्होंने काम किया उस दे बारे भी आपां चर्चा करांगे और प्यारे प्यारे जे जिहड़े गीत आ उह भी सुणांगे। तो आओ पहली शुरुआत जिथों इन्हां नूं ब्रेक थ्रू मिली सी रतन फिल्म दी, गीत दा नाम है जब तुम ही चले परदेस। बहुत ही प्यारा जिहा गीत है करण दीवान जी दी आवाज़ दे विच। आओ सुणदे हां इस प्रोग्राम दा पहला गीत। Thank you.

FM 102.7 MHz से है आकाशवाणी जलंधर का रेनबो चैनल और तुसी प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो फिल्मी दुनिया अपने दोस्त कुलदीप दे नाल। जी इस प्रोग्राम दे विच गल चल रही है जी नौशाद जी दे बारे जी। बिल्कुल जी, नौशाद जी ने कई महान गायकों दे नाल काम किया जिमें कि रवि साहब, लता जी, मुकेश जी, तलत महबूद और कई सारे होर गायक। उन्होंने इन गायकों की आवाज़ नूं नवा रूप दिता। उन्होंने कई प्रसिद्ध गीत भी ने जिमें कि मन तरपत हरिदर्शन को आज, मोहे पनघट पे प्यार किया तो डरना क्या, दुनिया में हम आए हैं। यह गीत मतलब होर भी कई गीत ने, एक गीत सिर्फ गीत नहीं सगों एक एहसास ने।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

107.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल और शाम ने 8:04 हो चुके ने ते प्रोग्राम शुरू हो चुके है जी केड़ा रंगला पंजाब जी बिल्कुल पंजाब दे सभ्याचार विरसे नाल संबंधित जानकारी इस प्रोग्राम दे विच अहीं तुहाडे नाल सांझी करदे आ अलग अलग जिले विच जाने आ तुहानू उस दी सैर कराने आ तुहानू वधिया वधिया जे कपड़े पाउने जी बिल्कुल पंजाब दे सभ्याचार दे नाल विरसे नाल पंजाब दे नाल जुड़ी हर एक चीज़ दे नाल तुहानू रूबरू या कह लो कि जानकारी दिंदे आ और तुहाडी जिहड़ी तुहाडा मनोरंजन जिहड़ा आ ओह पंजाब दे गीतां दे नाल करदे आ अज भी तुहानू कुछ अजिहा ही करांगे जिवें कि तुहानू पता ही है पंजाबी सभ्याचार उस दे विच हर कुछ है मिट्टी की खुशबू होगी पेड़ हो जान या मिट्टी हो जाए या पिंड हो जान शहर हो जान कपड़े खाण पीन हर एक चीज़ दे विच पंजाबी सभ्याचार जिहड़ा आ उह झलकदा ही है सो अज भी असीं तुहानू कुछ इदां दा ही दसना है दसना नहीं है तुहानू लै के चलना असीं तुहानू सैर करानी है एक शहर की जी बिल्कुल जी एक जिले की सैर करावांगे जिसका नाम है जी दस दो या तुसी गैस करोगे गैस चलो गैस वाला तो साहब नहीं चलो रहन दो गैस नहीं कराते तो तुम दस दें जी तुम कितने लैके जाना जी असी तो अज लैके जाना जी पटियाले हाँ जी ए बस तैयार है जी तो गड्डी बह जाओ जी तो पटियाले की आप सैर करा नहीं दोस्तों अज असी तुहानू पटियाले शहर के बारे सारी जानकारी जो भी अपने को इकट्ठी की हुई है और कुछ जानकारी आप तुहाडे तो भी लेनी है सो नंबर 9855-10-10-27-9855-10-10-27 तो जिन्ने भी मेरे दोस्त पटियाले बैठे हुए ने उन्होंने पटियाले के इतिहास बारे या कुछ फेमस चीज़ बारे कुछ भी पता है तो इस नंबर के उत्ते जरूर साझा करन और मैं थोड़े जोड़े मैसेज नी जानकारी इस प्रोग्राम के शामिल करूँगा और बाकी जोड़े साढ़े लिसनर्स ने उन्हों सी करूँगा

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

हाँ जी, इतों पता लगता है जी ये तुहाड़ा फेवरेट वाला प्रोग्राम है जी। जी बिल्कुल, दिल चाहते हैं प्रोग्राम सारे बड़े की कहिंदे ने कि बड़े उत्सुकता दे नाल ना उन्हों वेट कर रहे होंगे ने कि कदों ये प्रोग्राम आवे, तो कदों असी फोन चकीए, तो कदों वट्सअप करिए, तो कदों साड़ी फरमाइश जी पूरी होवे जी। बिल्कुल, और मैसेजेस का सिलसिला जिहड़ा वह शुरू हो चुका है जी। और कह रहे हैं प्रोग्राम दिल चाहता है प्रस्तुतकर्ता को प्यार भरी नमस्कार जी। नमस्कार, गांव नथाना पंजाब तो हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, और कह रहे हैं कि अपनी पसंद का कोई भी गीत जिहड़ा सुना दिता जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई। एक होर मैसेज आया जी, कह रहे ने दिल चाहता है शो आकाशवाणी जलंधर एफ एम रेनबो चैनल, आई लव आकाशवाणी, आकाशवाणी माई फ्रेंड, विदाउट आकाशवाणी आई कैंट लिव, एनी सोंग टू रीड आउट माई मैसेजिज, इंग्लिश के लिखा है, जो जिदा लिखा मैं उदा ही पढ़ दिता है। और लिखा कि इन्होंने जी, हितेंद्र दास विलेज कुडाली पीओ नगेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट श्री भूमि स्टेट आसाम तो मैसेज किया जी। बहुत बहुत शुक्रिया एड्डी दूरों साढ़े को मैसेज करन दे लई, और तुहाडा मैसेज जिहड़ा इस प्रोग्राम दे विच असी शामिल कर लिया जी। एक होर मैसेज आया साढ़े को, कार्यक्रम पेशकर्ता को हमारा प्यार भरा नमस्कार जी। नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, सत श्री अकाल, आप कैसे हो जी? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हो? अपना ध्यान रखिए, मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, गर्मी है, और उससे बचिए जी। बिल्कुल, सारे जने थोड़ा गर्मी का मौसम चल रहा, मौसम जड़ा है जिदा एकदम गर्मी तो आके तुम ए सी च बह जाते हो तो थोड़ी सेहत जी खराब हो जाती है। सो इस करके जो भी तुम बाहर गर्मी तो आते हो सो एकदम ए सी ना चालू कराया करो, थोड़ा रूम टैंपरेचर के अपनी बॉडी में आँदे, उस तो बाद ए सी की जी वरतों वह कराया करो। इन्होंने कहा जी, फिल्म आप तो ऐसे ना थे दा गाना जड़ा आ, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल, लिखा कि इन्होंने रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित ते खुशी गोस्वामी जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, और तुहाडी फरमाइश जी पूरी करन जा रहे हैं जी, और तुसी भी अपनी फरमाइश पूरी करवा सकते हो। करना की है, व्हाट्सएप नंबर है जी 9855 10 10 27 9855 10 10 27, उस दे उत्ते सानू हिंदी दे पंजाबी पुराने फिल्मी गीतां दी फरमाइश जी है वो तुसी भेजनी, और तुहाडा दोस्त तुहाडी फरमाइश नू पूरी करन दी कोशिश करेगा जी।

FM 102.7 MHz से है आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल। और रात दे 10 बज चुके ने और ये समा हो चुके है जी शाम ए गजल प्रोग्राम दा आगाज करन दा। प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जी थोड़ा अपना दोस्त ते होस्ट कुलदीप। शाम ए गजल प्रोग्राम जिस विच असी थोड़े नाल कई मशहूर शायरां दी शायरी जिहड़ी है सांझी करते हैं, ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ, ਰਾਮ ਵਚਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਕੁਛ ਆਸਾਨ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, आओ जिंदगी को कुछ आसान बनाते हैं, खुशी हो या गम सिर्फ मुस्कुराते हैं, वजह हो या ना हो मुस्कुराने की, फिर भी एक मुस्कान जिंदगी के नाम छोड़ जाते हैं। आओ जिंदगी को आसान कुछ ऐसे बनाते हैं। सुना है हजारों बहाने हैं रोने के, मुस्कुराने को एक ही वजह काफी है, तो आओ उस वजह को जहां भी मिले ढूंढ लाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही प्यारी जी लाइन उदा नहीं ही एक प्यारी जी गजल थोड़े रेडियो सेट के उत्ते जाना कि नहीं है, सुनते रहना FM रेनबो जलंधर, दिल तो दिल।

जिंदगी की सांस बन जाते हैं दिल के रिश्ते, कभी सुख की छांव देते हैं बनके वह फरिश्ते। दिल ही दिल में दिल की सारी बात कह जाते हैं, प्रीत में बहकर सभी जज्बात कह जाते हैं। सरगमों के तार बन जाते हैं दिल के रिश्ते, कभी सुख की छांव देते हैं बनके वह फरिश्ते।

सुनो, मेरा मन तुझसे कुछ कहना चाहता है। मेरा मन तेरी आंखों की गहराइयों में डूबना चाहता है। अब आईना भी देखूं तो बस तुझे देखना चाहता है। इस थकते सफर में आराम भी बस तेरे नाम से चाहता है। सुनो, मेरा मन तुझसे कुछ कहना चाहता है।

जो करीब है वो समझ ना पाए, जो करीब है वो समझ ना पाए, जो दूर है वो दिल में समाए। अजीब कश्मकश है जिंदगी की, अजीब कश्मकश है जिंदगी की, दिल ठहरता है पर वक्त निकल जाए।

सब जानता हूँ मैं भी, सब जानते हैं वो भी, दोनों ही चुप हैं, लेकिन कैसा ये इश्क है। वो ना कहे भले कुछ, खामोश हम हों बेशक, लफ्जों की कब जरूरत, बेलफ्ज इश्क है जी।

ख्वाबों की इस दुनिया में तुम आओ, आकर मुझे अपने गले लगाओ। ख्वाबों की इस दुनिया में तुम आओ, आकर मुझे अपने गले लगाओ। धड़कनों में बसी है चाहत तुम्हारी, सपनों में ही सही प्यार अपना निभाओ।